टाशी दिलिक, मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 10 तारीख व दिन है रविवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री कामेयांफो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अंटू कुमार दास और सुश्री शिखा डेका, मुंबा उद्घोषक श्री कुंचो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन लामू। आकाशवाणी तावंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज। तत्पश्चात
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

0: Curve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Bahar defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended, tied at 4-4 following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And in IPL cricket, Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन

0: भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी

0: विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के

0: बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए गिलुंग नवंग शक्या और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत ये शी खंडो मुख छुए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गिरुंगावन शाक्या और साथियों से बहुत भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आज सुनिए भूपेन हजारिका की आवाज में चंद आधुनिक बांग्ला गीत।

विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक बांग्ला गीतों का भूपेन हजारिका की आवाज में, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया भूपेन हजारिका की आवाज में चंद आधुनिक बांग्ला गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्रा तंजिन पेमा से नियमित योग और व्यायाम का महत्व विषय पर उनके विचार।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी तंजिन पेमा, पीएम श्री जेएनवी तवांग। मैं 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज की कार्यक्रम में मेरी बात का विषय है नियमित योग और व्यायाम का महत्व। आजकल हम ज्यादातर समय मोबाइल फोन, टीवी और किताबों के साथ बैठकर बिताते हैं। इससे हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और हमें जल्दी थकान महसूस होती है। ऐसे में योग और व्यायाम करने से शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। योग करने से हमारा शरीर लचीला और मन शांत रहता है। रोज योग करने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और हमारा मन खुश रहता है। योग जैसे प्राणायाम करने से सांस से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है। व्यायाम जैसे दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना या हल्की कसरत करने से शरीर मजबूत बनता है। इससे मोटापन कम होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। व्यायाम करने से शरीर में ताकत आती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग और व्यायाम से हमें अनुशासन भी सीखने को मिलता है। जब हम रोज समय से उठकर योग या व्यायाम करते हैं तो हमारी दिनचर्या सुधरती है। छात्रों के लिए यह बहुत फायदेमंद है।

0: कि इससे ध्यान लगने की शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर काम अच्छे से कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें रोज थोड़ा समय निकालकर योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए। यह हमें स्वस्थ, खुशी और सफल प्रदान करता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा लीजिए श्रोताओं, पेश है गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन के आवाजों में। गीत के बोल है सैयद कादरी के और संगीत मिथुन का।

श्रोताओं का कार्यक्रम नारी संगीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से। इस गीत को रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने और गीत को स्वर दिया है सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद महिलाओं पर आधारित हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। इसी क्रम में अभी आपने सुना वेकअप सिड फिल्म का एक गाना कविता सेठ की आवाज में, जिसे रचा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोई ने। तो लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा प्रस्तुत है ऊंचाई फिल्म से नक्श अजीज के आवाज में। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा प्रस्तुत है सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, सुल्तान फिल्म के इस नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4 बजने वाले हैं। लीजिए पेश है मासिक कार्यक्रम बाल जगत। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए आइडियल इंग्लिश स्कूल तावंग के विद्यार्थियों द्वारा एक बाल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संचालन किया है आकाशवाणी तावंग की हिंदी उद्घोषिका दोर्जे ड्रमा ने।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक कार्यक्रम बाल जगत सुन रहे हैं आप सभी श्रोताओं का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में न्यू मार्केट में मेन्सिकंग के निकट स्थित आइडियल इंग्लिश स्कूल के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने आमंत्रित किया है। तो बच्चों, आप सभी को भी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम
1: जी। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले आप सभी अपने अपने नाम और अपनी कक्षा कितने में आप पढ़ते हैं बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम रिंचिन गोनपो है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ।
1: बहुत अच्छे। नेक्स्ट।
3: गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स, माय नेम इज तंजन जॉर्डन ऑफ क्लास 5।
4: नमस्कार सभी को, मेरा नाम तोनिर बसार है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ।
5: माय नेम इज केलसांग चोरेन की ऑफ क्लास 6।
6: My name is Tenzin Dondo from class 4.
7: नमस्कार, मेरा नाम वानिया गुप्ता है, मैं कक्षा UKG में पढ़ती हूँ।
8: My name is Tenzin Yangdol. I read in class UKG.
9: नमस्कार, मेरा नाम लेकी डोंडरूप है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ।
10: My name is Pisa Niko from class 4.
11: नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंचन दावा है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ।
1: बहुत अच्छे। तो श्रोताओं, जो नन्हे मुन्हे बच्चों को हमने जो आइडियल इंग्लिश स्कूल से हमारे आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम बाल जगत में आज आमंत्रित किया है, इस कार्यक्रम में बच्चे द्वारा सुनाने जाने वाले कुछ कार्यक्रम में इसमें थोड़ी सी आपको पहले संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे बच्चे जो है आपको सुनाने वाले हैं भोती भाषा में एक कविता, अंग्रेजी में कविता, हिंदी में कविता, मोनपा गीत, सेव वाइल्ड लाइफ पर वार्ता, राइम्स और हमारे वातावरण पर वार्ता, चुटकुले, अंग्रेजी में कहानी, हिंदी में कहानी, हिंदी गीत और अंत में कुछ तवांग के बारे में सामान्य ज्ञान हम बच्चों से पूछने वाले हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप में से क्या क्या सुनाने वाले हैं, आप क्या क्या तैयारियां करके आए हैं। तो सबसे पहले रिंचिन गुनपो में आपसे जानना चाहूंगी, आप इस कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं हमें?
2: मैं एक भोती के भाषा में कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: जी बहुत अच्छे। तंजिन जर्दन, आप बताइए।
3: मैं अंग्रेजी कविता और हिंदी सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ।
1: बहुत अच्छे। तो निर्वसर, आप बताइए क्या सुनाने वाली है?
12: मैं एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ।
1: बहुत खूब। केलसंग चरण की, आप बताइए।
13: मैं एनवायरनमेंट का बारी में और मोनपा सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ।
1: तंजिन दंडरूप, आप बताइए।
6: मैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर एक वार्ता सुनाने जा रहा हूँ।
1: बहुत अच्छे। वन्या गुप्ता, क्या सुनाने वाली है?
14: मैं एक हिंदी राइम सुनाने जा रही हूँ।
1: बहुत सुंदर। तंजिन यंगरोल,
15: मैं एक इंग्लिश में

0: राइम सुनाने जा रही हूँ।
1: लकी डुंडरू, आप हमें बताइए आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं हिंदी में कुछ चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ।
1: बहुत खूब, आज लगता है लकी डुंडरू हमें खूब हंसाने वाले हैं, है ना? पिसा निको, आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: मैं अंग्रेजी में एक कहानी सुनाने वाला हूँ।
1: तेंजिन दवा, आप बताइए।
4: मैं एक हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
1: चलिए तो बच्चों, हम अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तैयार हो ना आप सब?
5: यस मैम।
1: तो बच्चों, आप सभी को बोध भक्ति गीत तो आते ही होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी मिलकर हमें एक बोध भक्ति गीत सुनाएं।

0: ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए रिंचिन गुनपो, आप अपने भोती भाषा में जो कविता सुनाने वाले थे आप हमें सुनाइए।
1: मनिल तावांग लुंगपा छे दे चन गी जिंखम लुंग पे फूदा परसुम गुन पे ठेंग वा छाके मनिल तावांग लुंगपा रिन चन नर गी जिंखम गांग दे फुंग सुम चोपा साजी कुनला ख्याप्ये मनिल तावांग लुंगपा के चन दम पे जिंखम ला मा कु ठेंग निम्जन न्याम पामे पर जन्ये मनिल तावांग लुंगपा पे मा जू ने जिंखम छोक्सी गांव दू ते क्यों ने छिंदम पे दल जो मनुलता वंग लूपा स्वयनम साक पे जिंखम मीनम छे दे छे जिंग रे की गांग ला ने ये मनुलता वंग लूपा जिक तन लाई जिंखम यू ई मंडल डावा मो जंग री कर ये तुझे छे।
0: बहुत अच्छे। चलिए अब तंजिन जर्दन, आप हमें सुनाए अंग्रेजी में कविता।
2: The name of my poem is Childhood, written by Marcus Natan. I hope you all will enjoy my poem. Childhood. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. Thank you.
0: बहुत अच्छे। चलिए अब पारी है तोनिर बसर का, आप सुनाइए हिंदी में कविता।
3: नमस्कार सभी को, मेरा नाम तोनिर बसर है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता का कवि है सुमित्रा नंदन पंत। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरो सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मत, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला दूरा मुख दूर पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी परी न हो मैं तेरा इसने न खो मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहा दिखा दे चंद्र दे, धन्यवाद।
0: बहुत अच्छे। चलिए तो बच्चों अब बारी है किलसांग छरन की के साथ आप सभी ने मिलकर सामूहिक एक मोनपा गीत पेश करने वाले हैं। तैयार है? चलिए।

0: जजे।
1: बहुत अच्छे बच्चों, तो फिर तंजिंदर नूप आप हमें सुनाइए सेफ वाइल्ड लाइफ पर वार्ता।
2: ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज अ टर्म दैट रिफर्स टू एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। दे आर अ लिविंग रिसोर्स दैट विल डाई एंड बी रिप्लेस्ड बाय अदर्स ऑफ देयर काइंड। वाइल्ड लाइफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ नेचर। Wildlife conservation is about protecting animals and their natural environment. Many animals are in danger because humans cut down forests, pollute the air and water, and hunt them for sports or food. When animals lose their homes, it becomes hard for them to survive. It is important for everyone to help protect wildlife. We could do this by keeping the environment clean, supporting wildlife organizations, and saying no to harmful practices by poaching. Zoos and wildlife sanctuaries play an important role in saving endangered species by giving them a safe place to live and reproduce. Many animals are in danger of extinction and strongly needs to be saved. Animals add to the natural beauty of Earth. Human activities become a big threat to the animals. Hunting and fishing is a sport or recreation for some people. Some people kill animals for making profits by selling their skin, meat, etc. For example, elephants are killed for their ivory, alligators for their skin, birds for their feather, fur, etc. Deforestation is also a major cause of their extinction. The Indian government has started various natural projects and wildlife conservation programs such as Project Tiger, nature camps and jungle lodges to promote the awareness of wildlife among the people. The Kaziranga National Park, Gir National Park and Sanctuary, Sundarbans National Park and Kanha National Park are a few examples of protecting wildlife in India. Lastly, everyone should care for wildlife to keep our own planet healthy, conserve wildlife and save the life of our world. Thank you.
1: बहुत अच्छे। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है वन्या गुप्ता की। वन्या गुप्ता, आप हमें अपनी हिंदी में राइम सुनाइए।
3: नमस्कार, आज मैं आपको दो हिंदी की कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सुंदर तितली। बैठ फूल पर सुंदर तितली, हंसकर मुझसे यू बोली, फूल न तोड़ो मुझे न छोड़ो, छेड़ोगी तो उड़ जाऊंगी, पास कभी न आऊंगी। मेरा स्कूल कितना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल जो आने सबको भाते, उन्हें देखकर सब लल जाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाती, फूलों से गिनती करवाती, टॉफी देकर हमें खिलाती, धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे। अब तंजिन यंगडोल, आपकी बारी है, आप हमें सुनाइए अंग्रेजी में राइम्स।
4: गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। टुडे आई एम गोइंग टू सिंग ए राइम्स। पीस ऑफ पेपर, लाइट ऑन द फ्लोर, मेक द पीस एंड आईडी, पिक देम आउट, थ्रो देम आउट, लिटिल विंग, लिटिल विंग, लिटिल विंग, Love on the hilltop, little wing, load on the plain, little wing, love on the sunshine, little wing, love on the rain. Thank you.
1: बहुत अच्छे। वन्या गुप्ता और तेंजिन यांगडोल, आप दोनों मिलकर एक राइम्स हमें सुनाने वाले थे ना?
3: Yes, ma'am.
1: चलिए शुरू कीजिए।
3: Twinkle.

0: बेटे भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारा मामा नहीं। मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर। और अब लेकी दुनरूप हम सबको बहुत हंसाने वाले हैं, यानी लेकी दुनरूप अब हमें हिंदी में चुटकुले सुनाने वाले हैं। लेकी दुनरूप शुरू कीजिए।
2: नमस्कार, आज मैं आपको चुटकुले सुनाने वाला हूँ। टीचर बच्चों बताओ, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? पप्पू, किताब में सर खोलते ही नींद आ जाती है। चिंटू, पापा बूट क्या सच में होते हैं? पापा, नहीं बेटा, बूट वूट कुछ नहीं होता। चिंटू, तो फिर स्कूल में हर साल भूतपूर्व छात्र पुरस्कार क्यों मिलता है? गुलू, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं करोड़पति बन गया हूँ। मोलू, फिर क्या हुआ? गुलू, क्या बताओ, अलार्म बच गया और सारा सपना टूट गया। टीचर, तुम क्लास में ले क्यों आए? स्टूडेंट, मैम सड़क पर एक बोर्ड लगा था, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले।
1: चलिए और नेक्स्ट सुनाइए।
2: डॉक्टर, आपकी तबीयत कैसी है? मरीज, बस थोड़ी सी जुकाम है। डॉक्टर, ठीक है, ये दवा ले लो। मरीज, क्या ये खाने के बाद लेनी है? डॉक्टर, नहीं, ये दवाई खाए बिना लेनी है। जीतू, एक बात बताओ, मीठा बता। जीतू, ये जो पेड़ शब्द है, ये हमेशा पाँव से पहले क्यों आता है? गोलू, मेरे दादाजी तो बहुत मजेदार है। मुलू, कैसे? गोलू, वो रात को सोते हुए खराते लेते हैं और सुबह उठकर कहते हैं, चलो आज की कमाई हो गई। चिंटू, यार मुझे नींद नहीं आ रही। पिंटू, तो तू छत पर जाकर सो जा। चिंटू, वाह क्यों? पिंटू, क्यों क्यों, ऊपर पंखा है, अगर तू गिरेगा तो पंखे से झूल जाएगा। धन्यवाद।
1: चलिए लेकी दुनरूप, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। पिस्सा निको के तरफ आगे बढ़ते हैं। पिस्सा निको, हमें सुनाइए अंग्रेजी में कहानी।
3: गुड इवनिंग। द टाइटल ऑफ माय स्टोरी इज द बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। वंस इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड अ 10 ईयर ओल्ड बॉय नेम्ड अर्जुन। ही वाज नॉट द फास्टेस्ट, टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड इन स्कूल। इन फैक्ट अर्जुन वाज नॉट गुड एट रनिंग और इवन ड्रॉइंग, बट ही हैड अ बिग ड्रीम। ही वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। Every evening, Arjun would lie on the grass and look at the sky, watching the birds glide through the clouds. One day, he said, I'll fly just like them. But when he shared his dream at school, other children laughed. Humans can't fly, said one boy. You can't even climb the monkey bar, giggled a girl. Arjun felt sad, but he never gave up. He didn't mean he wanted wings. He meant he wanted to do something amazing, something that would make him feel as free as flying. So he went to the library and read books about aeroplanes, rockets, and birds. He built tiny paper planes, then wooden gliders, and slowly learned about lift, wind, and speed. One day, his school announced a science fair. Everyone had to make a project. Many kids planned to build volcanoes or simple machines. Arjun thought, this is my chance. He spent days building a small handmade glider using wood, paper and plastic. It didn't look very fancy. Even his friends thought it wouldn't work. On the day of the science fair, when it was Arjun's turn, the students gathered. He climbed the school's roof with permission and carefully placed his glider at the edge. The wind blew. Everyone held their breath. Arjun gave it a gentle push and guess what? The glider flew across the playground soaring smoothly before landing perfectly. Everyone clapped and cheered. His science teacher came and said, Arjun, you may not have wings, but today you flew. That day, Arjun didn't just win the first prize. He won respect, belief, and a new name at school, the boy who could fly. Moral of the story, even if people laugh at your dreams, never stop believing in them. If you work hard and never give up, your dreams can take flight, just like Arjun's glider. Thank you.
1: चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तंजिन दवा की ओर। तंजिन दवा,
4: नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा कहानी का नाम है लड़का और बिछुआ। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था, वह एक खुशी मजा और मस्ती करने वाला

0: था। वह एक आज्ञाकारी बच्चा था जिसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब लड़का मैदान में खेल रहा था, अचानक उसे एक छोटे से बिछुआ ने काट लिया। घायल होकर घर भागा। अपनी माँ से मिलने पर उन्होंने कहा, उन्हें एक छोटे से बांस ने काट लिया। उसके माँ ने कहा, मेरे सवजा कि आप जब अगली बार बिछुआ को हाथ में पकड़े तो मजबूती से, याद ही आप उसे जोर से पकड़े तो यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप जो भी करें साहस पूर्वक करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास सफलता की कीजिए। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर। अब आप तंजिन जुर्दिन के साथ आप सब मिलकर हमें एक हिंदी गीत सुनाने वाले हैं, है ना? तैयार है? चलिए फिर शुरू कीजिए।

0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे। तो बच्चों, आप सभी ने अभी आगे बढ़ना है अगली पर्व के ओर, यानी हम आपको पूछेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, यानी सामान्य ज्ञान हमारे तवांग के बारे में। तो आप सब तैयार हो?
2: यस मैम।
1: बहुत अच्छे। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ से आप सभी को सवाल पूछूंगी, आप में से जिसको आता है उसे जवाब देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा सवाल है, हु इज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ तवांग, यानी हमारे तवांग के जिला उपायुक्त कौन है?
3: मैम आई विल आंसर।
1: तंजिन दवा, ठीक है।
3: नामगिल अंगमो आईएएस।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अगला सवाल, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ तवांग मॉनेस्ट्री?
4: मैम आई विल आंसर।
1: ठीक है, चलिए बताइए।
4: गार्डन नामगिल लाचे।
1: रिंचिन गुनपो, बहुत अच्छे। और आप हमें बताइए, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ एआईआर कॉलोनी एंड डीसी ऑफिस एरिया? कौन बताएंगे?
5: मैडम मैं बताऊंगी।
1: ठीक है, तनिर बसर बताइए।
6: जित्रो से।
1: बहुत अच्छे। अब मैं अगला सवाल पूछूंगी, आप में से जिसको आता है वो बताएंगे, ठीक है? नेम टू हीरोज ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर।
7: मैम आई विल आंसर।
1: ठीक है, पिसानी को बताइए।
8: जसवंत सिंह रावत, सुबेदार जोगिंदर सिंह।
1: बहुत अच्छे। अब मैं पूछूंगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटी छो?
9: मैम आई विल आंसर।
1: तेंजिन दवा, बहुत अच्छे बताइए।
10: पंखंग टिंग छो।
1: बहुत अच्छे। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मोनपा ट्राइब, किसी को पता है?
11: मैम आई विल आंसर।
1: ओके, केलसंग छरन की बताइए।
12: लोसर।
1: बहुत अच्छे। और अब मैं पूछूंगी, टेल मी द नेम ऑफ सिक्स्थ दलाई लामा बोर्न एट उगेनलिंग इन तवांग।
13: मैम आई विल आंसर।
1: ठीक है, तेंजिन जर्दन आप बताएंगे।
14: गेलवा संग्यंग गेतो।
1: बहुत सुंदर। तो बच्चों, आपके साथ बातें करके, आपके साथ यह कार्यक्रम प्रस्तुत करके मुझे तो बहुत ही मजा आया, क्या आपको अच्छा लगा?
2: Yes, ma'am.
1: बहुत अच्छे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त हो रहे हैं, तो हमें यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आइडियल इंग्लिश स्कूल तवंग के विद्यार्थियों द्वारा एक बाल कार्यक्रम, जिसका संचालन किया है आकाशवाणी तवंग की हिंदी उद्घोषिका दोर्जी ड्रमा ने। इसी के साथ ही मासिक कार्यक्रम बाल जगत समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 होने वाले हैं, तो आइए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। इसके तहत आज सुनिए पंडित उल्लास बपट से संतूर वादन। राग है मारू बिहाग। तबले पर संगत दे रहे हैं पंडित वैभव नागेशकर तथा तंपुरे पर मदन भोगले और केतकी बपट।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे पंडित उल्लास बपट से संतूर वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन के रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकवर टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्था में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलोर में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तमिल वेट्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें केजी अरुणराज, अवध अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल है। इस अवसर पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग के कई

या मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को भी मंजूरी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल है। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी टीवी के प्रमुख श्री जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुए बैठक में रंजीत कुमार दास, विश्वजीत देवमारी, अनंता नियोग, जयदीप राय, अशोक सिंगल और पीयूष हजारिका सहित 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। असम गण परिषद के 10 विधायकों और वीपीएफ विधायकों की उपस्थिति में एनडीए के नेता के रूप में डॉ हेमंत बिस्व शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने डॉ हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से लोक भवन जाकर मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 102 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्ष उल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर है। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। यह प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मियों की छुट्टी में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखेधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़े संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष की भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और करवाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए जर्मनी

0: के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर उनके पसंदीदा नेता है। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति लोदोमिर जेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सनी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अल सनी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बातचीत बीच हुए वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकवर टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद की तिर्की ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed the BJP leaders and workers at Hull Airport in Bengaluru. The founder of Tamilaga Vetri Khajagam, actor-turned-politician C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered him the office, out of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with Tamil Nadu government to improve the lives of people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA in Assam. In the Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs including Ranjit Kumar Das, Biswajit Daimari, Ajanta Niyog, Rajdeep Roy, Ashok Singhal and Piyush Hajoreka proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. The proposal was subsequently seconded by other MLAs in attendance. Thereafter, in the presence of the 10 Assam Gana Parishad MLAs and BPF legislators, AGP leader Atul Bora and BPF leader Rihon Daimari proposed Dr. Himanta Sarma name as the leader of the NDA. Following these proposals, BJP Central Observer Jagat Prakash Nanda formally declared Dr. Himanta Biswa Sarma as the leader of BJP and the NDA. After being elected as the NDA leader, Mr. Sarma met Governor Lakshman Prasad Acharya at Lok Bhavan and formally submitted the proposal to form the government. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on 13th of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AIADMK

का देश बीजेपी छोपक लेचेबु भाषा सिलुन कुशप नरेंद्र मोदी सी नंगदंगा देश के खपनेगा छाले शुचन नंगमे तोंगु सिंघ्योंग नामदा निंकांगे नऊ पानंग दोजो सेमे तोंगु इजिक केघप चि दियारगे डाक्शो थोंगमे तोंगु शुंगोसु केथिम नोंबुर बेनंगसी नंगदंगा बीजेपी सी कोठियु एनडीए छोपक शुंग केघप निंग ngade kheli thi ninga no nangter ocho mimang yargi ning gehap kak yargi thoka chale nangdong nombor

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदन लेरिम के तहत सुनिए गेलुंग जंपा वांचू और साथियों से जोरवा छुड्रुक का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:07, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर मासिक कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा, जिसके तहत आप सुन सकेंगे सीडीपीओ तवांग श्रीमती डोंडो पेमा के साथ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं पर एक साक्षात्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ के तहत सुनिए माया सुखथंकर से कोंकणी भाषा में हिमगिरी रे गीत का पाठ आज शाम 7:27 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत सुनिए शाबाश मिट्टू फिल्म से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी के आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8:00 आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आज शामिल है मन मौजी, साहिब बीबी और गुलाम, हमराज, लैला मजनू और दो चोर फिल्मों से चंद सदाबहार नगमे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 11 मई 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज के साथ। तत्पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए अनुप जलोटा के आवाज में चंद हिंदी भजन। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए मार्तो कमदक के आवाज में चंद आधुनिक गालो गीतों का कल दोपहर 3:00। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए

श्री जेएनवी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा सिरिंग ड्रेमा से राष्ट्र निर्माण में एनएसएस की भूमिका विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत के तहत आनंद लीजिए। टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नूरान, आज अनुसले फिल्म से सुनीति चौहान, मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा बसिन, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से उदित नारायण तथा आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमन की आवाजों में चंद नगमों का कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरे, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे। भूल चूक माफ फिल्म से जुबिन नौटियाल, बवाल फिल्म से विशाल मिश्रा, जहरन खान और रोमी, श्रीकांत फिल्म से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार, हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव, योद्धा फिल्म से विशाल मिश्रा, दो पति फिल्म से परंपरा टंडन, सूरमा फिल्म से दिलजीत दोसांझ, सैयारा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख, बागी 4 फिल्म से जोश ब्रार और परंपरा टंडन तथा पिद्दी फिल्म से मोहित चौहान के आवास में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। श्रोताओं, कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग के तहत आनंद लीजिए निशांत खान से सितार वादन का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 दैनिक मनपा कार्यक्रम नमधर लेरिम के तहत सुनिए लामा केसंग नुरबू से मनपा में दिलो लिंगसा छे की उपन्यास का तीसरा और आखिरी भाग। दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री लोपसंग तुपदिन से कल शाम 5:30 पर। कल शाम 5:35 पर स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम थ्रोतिन लपचा। लेरिमसेरा कल शाम 6:10 पर कार्यक्रम चरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए गेलोंग जंपा वांगचुक और साथियों से जोरवा चुड्रुक का शेष भाग तथा खिनमे मठ के लामा तेंजिन गेलसन और साथियों से ड्रोइछो। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। साप्ताहिक कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत कल शाम 7:30 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे सुल्तान, जब हैरी मेट सेजल और गदर 2 फिल्मों से चंद नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए खेले हम जी जान फिल्म से जावेद अख्तर द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत का। आपकी वचन फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8:00। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 News@9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम चरोखा यही समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या की 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: खबरों के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही

0: mean. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है मासिक कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए श्रीमती डुंडुपेमा CDPO तवांग से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दुर्जी ड्रमा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा, जो एक नई कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हमने अप्रैल 2025 से किया था। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग के CDPO श्रीमती डुंडुपेमा जी। तो CDPO मैम, आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच
2: जी। तो श्रोताओं, आज हम CDPO मैम के साथ इनके विभाग में यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ऑनगोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स यानी फिलहाल चल रहे सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और शायद आपको याद भी होगी कि इससे पहले भी हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रमों में CDPO मैम ने शामिल होते हुए आप श्रोताओं तक महिला एवं बच्चों से जुड़े कई सरकारी योजनाओं के बारे में कई बार जानकारियां पहुंचाई थी। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे ओर से जितनी ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाए उतनी ही अच्छे हम सब के लिए है। और इस समय हमें ऐसी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो अभी अभी नई पेरेंट्स बने होंगे या फिर नई पेरेंट्स बनने जा रहे होंगे। तो आप सभी के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। तो CDPO मैम, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप हमें बताएं कि इस समय इस वक्त आपके विभाग के अंतर्गत कौन सी नई योजनाएं चल रहे हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं।
3: थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमको ये दोबारा मौका देने के लिए कि ऑल इंडिया रेडियो में आए और दोबारा मेरा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनमें जो ऑनगोइंग स्कीम्स है या अब PM फ्लैगशिप प्रोग्राम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उनके बारे में हमको दोबारा बताने का मौका दिया। तो जैसे कि आपने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैंने बहुत बार ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू या जो इंडिविजुअली आपका अवेयरनेस प्रोग्राम होता है उनके द्वारा हर बस्ती हर सेक्टर हर सर्कल में अवेयरनेस दे चुका है। लेकिन हाँ, ये दोबारा फिर से बताना कि क्या क्या स्कीम ऑनगोइंग है, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, फिर से दोबारा जान लेना ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि हमारे WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मेनली तीन तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे पहले है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान।
2: जी, इसमें क्या क्या होता है?
3: ये हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है के अंदर मेनली हम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू से और सुपरवाइजर्स होते हैं तो इनके थ्रू से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो महिला और बच्चों में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का गैप दिखा गया है उनको फुलफिल करने का गवर्नमेंट का ये एक स्कीम है। और ये हमारे तरफ से भी पूरा पूरी कोशिश रहती है कि जो महिलाएं हैं जिनको न्यूट्रिशन की कमी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग के दौरान और जो छोटे बच्चे 0-6 इयर्स उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो, कोई भी मालनरिश ना रहे। और हमारा दूसरा स्कीम है मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति जो एक विमेन एम्पावरमेंट स्कीम है तो मिशन शक्ति में भी दो कंपोनेंट है। एक है संभाल यानी फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन, वुमेन का सेफ्टी के लिए है। और दूसरा है सामर्थ्य यानी वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन सेफ्टी का तो मेरा यहाँ जो करंटली जो OSC तवांग है, वन स्टॉप सेंटर तवांग, वो आपका फुल फ्लेजेडली फंक्शनल है। बहुत सारा केसेस भी ले चुका है और हमने आपका ऑल इंडिया रेडियो में भी सुना है कि हमारे जो OSC के फंक्शनरीज है वो आपके यहाँ कई बार आके वहाँ में जो जो प्रोविजंस है महिलाओं के लिए और जो विक्टिम्स वायलेंस अफेक्टेड विक्टिम्स महिला है उनके लिए क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में बताते हुए मैंने बहुत बार सुना है। तो ये हमारा एक मिशन शक्ति का सेफ्टी वाला कंपोनेंट है।

0: तो ओएसी में, हाँ ओएसी आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि वन स्टॉप सेंटर वायलेंस अफेक्टेड सभी महिलाओं के लिए है। वहाँ पे आपका फ्री लॉजिंग है, फिर आपका एडवोकेट भी है, आपका लीगल एड मिलेगा। अगर इन केस फिजिकली असॉल्ट हुआ है तो हमारे वहाँ पे एक ANM भी है जो ओएसी में 24/7 रहता है। दूसरा ये जो सेफ्टी कंपोनेंट का दूसरा स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2018 में शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लेट से यानी आपका 2 साल पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो स्कीम्स ना विमेन्स और बेटियों के लिए है, सिर्फ WCD में नहीं बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स में भी है, उनसे लिंक करे, उनसे कोऑर्डिनेट करे, और जितने भी विमेन रिलेटेड स्कीम्स है ना उनको एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और दर्जी जमा और एक स्कीम है हमारा विमेन हेल्पलाइन नंबर WHL 181 है, 181 आप लोग जितना भी श्रोताएं हैं जो भी लिसनर्स है ऑल इंडिया रेडियो के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप 181 ये नंबर को नोट कर लीजिएगा। 181 ये 24/7 फंक्शनल है, फिलहाल तो ईटानगर से फंक्शनल हो रहा है, ईटानगर से ही मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन ये रीचेबल है, आप कहीं से भी डायल करो रीचेबल है। ये कब यूज करना है, जब आपके आमने सामने या आपके साथ महिलाओं के लिए जो आपके साथ या कहीं आसपास कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रिपोर्टिंग किसको करना है, तो आप 181 का सहायता ले सकते हैं।
1: जी महिलाओं जी, के साथ कहीं भी जगह
0: जी जी जी
1: किसी के द्वारा भी अगर कोई हिंसा होते हुए या अत्याचार होते हुए आपको पाए तो आप आपातकालीन स्थिति में इस नंबर को डायल करते
0: जी जी जी बिल्कुल हाँ जी जी। और कई महिलाओं ने इसका उपयोग किया हुआ है और इनका अभी तक तवांग हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा महिलाओं ने इनका यूज किया है, ये नंबर का थ्रू हेल्प लिया है। दूसरा मिशन शक्ति का दूसरा कंपोनेंट है एम्पावरमेंट का, विमेन एम्पावरमेंट का। तो विमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहले कंपोनेंट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY। तो इसके अंदर जो हमारे महिलाएं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो उनके वेज लॉस होते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय में उनका जो काम में रुकावट आती है, जो उनके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उनके लिए है ये स्कीम। जो तो इसके अंदर 5,000 रुपीज डायरेक्ट उनका अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
2: जी जी। तो गर्भवती के पहला तिमाही में काम नहीं कर पाते हैं, उस कारण आमदनी कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं हो पाती होगी, उसे भरपाई करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है।
0: ये स्कीम पहले बहुत साल पहले से चल रहा था, ये नया स्कीम नहीं है। इसमें एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड किया है, वो ये है कि अभी सेकंड बच्चा, पहले सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही था, अभी सेकंड चाइल्ड के लिए भी एलिजिबल कर दिया है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपका सेकंड चाइल्ड बेटी होना पड़ेगा।
2: जी जी, हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने पहले भी हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए हमारे श्रोताओं को इस योजना के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारियां दी थी। मैंने जैसे पहले कही थी कि हमें इस समय बहुत हमारे ऐसी श्रोताएं सुन रहे हैं जो हाल ही में कोई माँ बनी है, तो कोई अभी माँ बनने जा रही होगी, तो उन सभी लोगों को भरपूर इसकी लाभ मिले।
0: मेरी उम्मीद भी यही रहेगी कि आप लोग जो जो एलिजिबल है आप अपना हक को लीजिएगा, गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाया है, तो आप भले ही आप 5,000 रुपीज है, तो जो सेकंड बच्चा है जो जिनकी बेटी हुई होगी तो उनके लिए 6,000 रुपीज, ये नया एडिशनल है गवर्नमेंट का ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर में। और एक इम्पोर्टेंट चीज हम बताना भूल गया, अभी नया एक कंपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थोड़ा जल्दी ही एड हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन करके।
1: अच्छा।
0: तो जो भी महिलाएं होगी चाहे ग्रेजुएट हो या कोई स्कूल ड्रॉप आउट हो या कोई भी महिला जिनको ऑफिस वर्क में कुछ दिकदारी हो रहा है, अगर उनको कहीं स्कीम में या कुछ भी सहायता चाहिए होगा तो ये इनके लिए हेल्प टेक्स का जैसे काम करेगा।
1: अच्छा, तो मतलब किसी और से पूछ कर या भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: जी जी,
1: है ना।
0: जी जी, अभी जैसे आपने हमको इतना अच्छा मौका दे ही दिया है, तो मैं मिशन वत्सल्य, ये हमारा तीसरा स्कीम है मिशन वत्सल्य, जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बोलता है। ये स्कीम में हम थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहेंगे अगर आप इजाजत दे तो।
1: बिल्कुल।
0: ये एक्चुअली मिशन वत्सल्य यानी मिशन माँ का प्यार ना, तो मिशन वत्सल्य आपका जुबिनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के

0: पर में बेस्ड है, तो इसके अंदर में हर वो बच्चा, हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा है, चाइल्ड है, उनको चाइल्ड करके इसमें डेफिनेशन दिया गया है मिशन वत्सल्या में। तो मिशन वत्सल्या को हम किसके लिए है, मिशन वत्सल्या, तो जैसे कि हर बच्चा का अपना माँ पिताजी होता है, पेरेंट्स होता है, उनको अपना माँ का प्यार देता है, तो मिशन वत्सल्या ही है माँ का प्यार। तो माँ का प्यार, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चा जिनके पास माँ नहीं है, जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है, जो ऑर्फन है, और जिसका बच्चे जिनके माँ बाप होते हुए भी वो अबंडेंट है, इनको छोड़ा गया है, और जो माँ बाप एलिजिबल नहीं है अपना बच्चा को लुक आफ्टर करने के लिए, उन सभी बच्चों के लिए है ये मिशन वत्सल्या। तो मिशन वत्सल्या में दो तरह का चाइल्ड डिफाइन किया गया है, एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, और दूसरा जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मीन्स 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो क्राइम करते हैं। तो अभी मैं फोकस करूंगी कि CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये क्या है, कौन है ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि आए दिन हमको या मेरा जो मिशन वत्सल्या के जो डेडिकेटेड स्टाफ से उनको कॉल आते रहते कि हम एडॉप्शन करना चाहते हैं, लेकिन एडॉप्शन करे कैसे। तो आज का इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए मैं अभी सभी पेरेंट्स है जो एडॉप्ट करना चाहते हैं उनको ये प्रोसीजर और उनको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ना चाइल्ड, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि चाइल्ड किसे कहते हैं, चाइल्ड मीन्स जो बच्चे 18 साल या 18 साल से कम है वो चाइल्ड है। तो उनको कब एलिजिबल फॉर एडॉप्शन बोला जाता है, वो सेम बच्चा जो एडॉप्शन के लिए कब एलिजिबल होता है, सबसे पहले तो वो जो ऑर्फेन हो, ऑर्फेन मीन्स जिनके कोई माँ बाप नहीं है, देन सरेंडर और अबंडन हो, यानी जिनके कोई माँ बाप है लेकिन कुछ क्राइटेरिया है या कुछ कंडीशन के कारण वो अपना बच्चा को नहीं लुक आफ्टर कर पा रहे, तो वो सरेंडर और अबंडन बच्चा है। फिर कोई रिलेटिव का बच्चा, फिर कोई अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो पहले हस्बैंड या वाइफ का बच्चा है ऑलरेडी, तो वो भी अडॉप्टिव हो जाता है, उनको भी अडॉप्शन कर सकते हैं।
1: कानूनी तौर पे किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कौन सी पेरेंट्स योग्य होते हैं?
0: सबसे पहले तो अगर जो पेरेंट्स जिनके कोई बच्चे नहीं है वो ऑफकोर्स आप अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं, और जिनके जो पेरेंट्स जिनके एक बच्चा है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स जिसके पास ऑलरेडी दो बच्चा है वो अडॉप्शन के लिए नहीं जा सकते, उनको अडॉप्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा।
1: अच्छा,
0: तो जिनके पास दो बच्चा है वो अगर आप चाहे तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। देन दूसरा क्राइटेरिया, अगर वो अडॉप्शन करने के लिए अडॉप्शन करना चाहता है, कोई पेरेंट्स अडॉप्शन करना चाहता है, तो दूसरा क्राइटेरिया यही है कि आपका फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक बच्चा को अडॉप्ट कर रहे तो फ्यूचर में हम उसी से ही कमा के खा लें, ऐसा नहीं होना है। फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्टेबल होना है, देन आपका फिजिकली और मेंटली इमोशनली सभी फिट होना है, साउंड होना है।
1: जी, मिशन वत्सल्या शब्द ही प्यार से भरपूर है, और मैम हमारे समाज में भी ऐसी कई दंपत्ति होंगे जो अपने खुद के बच्चे पैदा करने के सक्षम नहीं होते हैं, और ऐसी कई सारे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ अपनाने वाले की आवश्यकता होते है। और अगर किसी को कानूनी तौर पे किसी बच्चे को गोद लेनी हो तो मिशन वत्सल्या के अंतर्गत जाकर कानूनी तौर पे गोद ले सकते हैं।
0: जी जी, और कानूनी तौर से गोद लेने से आपके फायदे भी बहुत है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। जैसे एक सिंगल महिला किसी भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर वो मेल, सिंगल मेल है, तो वो सिर्फ मेल को ही अडॉप्ट कर सकते, गर्ल चाइल्ड को नहीं अडॉप्ट कर सकते। फायदा ये रहता है कि फ्यूचर में अगर जैसे कि आपने किसी बच्चा को अडॉप्ट कर लिया, फ्यूचर में जाके वो बहुत ही सक्सेसफुल सक्सेसफुल रहा, तो हो सकता है कि जो उनका बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो वो क्लेम करे, तो आपका पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो आप लीगली वो बच्चा आपका रहेगा, तो दोबारा आप क्लेम नहीं कर पाएगा। या कोई सरेंडर बच्चा है जिसने इनिशियली माँ पिताजी कुछ कंडीशन के कारण आपको सरेंडर कर दिया, CWC को सरेंडर कर दिया है, तो लेकिन कुछ साल बाद उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो चाहता है कि वो बच्चा दोबारा वापस उनके पास आए, तो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा लीगल एडॉप्शन का, तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या फायदा रहेगा कि वो बच्चा अगर लीगली एडॉप्ट करता

0: है तो हम लोग उनको, हम लोग यानी जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उनको क्वार्टरली मंथली आपका रेगुलरली मॉनिटरिंग करेगा कि जो आपका एडॉप्टिव पेरेंट्स है वो आपको किस ढंग से रख रहा है,
1: अच्छा।
0: आपका पालन पोषण ठीक से कर रहे कि नहीं कर रहे, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे कि नहीं कर रहे
2: जी। मतलब कोई भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे को कानूनी तौर पे भी अगर गोद ले लिया और सरकार ने बच्चे उनको दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बात वहीं पर खत्म हो गया। अब जो बच्चा गोद लिया वो हमारा हुआ और इसके साथ अब चाहे कुछ भी करे हमारे मर्जी, बल्कि सरकार हमेशा उन पर निगरानी करते हैं, क्या वे उस बच्चे की अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं या नहीं, क्या वे उस बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं, है ना।
0: आपने मौका दे ही दिया है तो मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ट्राइबल अफेयर्स का तीन स्कीम के बारे में आपके श्रोताओं को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। पहले जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP बोलता था,
1: अच्छा।
0: अभी उसका नाम जो चेंज हो गया है चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम
1: जी।
0: तो इसका तीन कंपोनेंट है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन स्कीम
1: जी जी।
0: और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो अभी भी ये स्कीम नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी पब्लिक में, अभी भी जो कॉमन पीपल है उनके अंदर में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि कौन एलिजिबल है, इसको अप्लाई करना कहाँ है ना, तो क्राइटेरिया क्या रहता है। तो मैं थोड़ा सा इसका बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये सबसे पहले तो आपका एलिजिबल होता है BPL फैमिलीज के लिए,
1: अच्छा।
0: बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका कोई सिक्योर वाला जॉब ना हो, जिनके इनकम 10,000 मंथली से कम है ना, BPL फैमिलीज के लिए है ये। और ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होता है 60 ईयर्स एंड अबव। देन आपका विडो पेंशन है, विडो पेंशन का आपका 40 ईयर्स एंड अबव। डिसेबिलिटी पेंशन है 18 ईयर्स एंड अबव का।
2: ये जो आपने जो योजनाएं बताए हैं, जैसे कि कोई उनके उम्र भी 60 साल पार हो गए और विडो भी है, तो दोनों ये जो योजनाएं हैं इसके लाभ ले सकेंगे या दोनों में से एक मिलेंगे?
0: उनको दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा
2: जी, जी।
0: अगर वो 60 ईयर्स से ना, जैसे कि आपकी विडो हुई तो विडो हुई तो 40 ईयर्स में ही वो अप्लाई कर सकेगा,
2: अच्छा।
0: लेकिन आफ्टर 60 वो अगर ओल्ड एज पेंशन अवेल करना चाहे या विडो पेंशन, उनमें से दोनों ऑप्शन में से उसको एक ही ऑप्ट करना पड़ेगा
2: जी, जी। तो मैम आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमारे श्रोताओं को आपके विभाग के अंतर्गत जो अभी चल रहे हैं लाभदायक योजनाओं के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ साथ आपके विभाग के जो आपके कर्मचारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर हमारे आकाशवाणी तवांग में आकर हमारे कार्यक्रमों में शामिल हुए और बढ़ चढ़ कर हमारे सहयोग देते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोबारा मुझे मौका दीजिएगा क्योंकि ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जो भी योजनाएं हैं आपको पब्लिक तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना श्रीमती डुंडुपेमा CDPO तवांग से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही हमारा मासिक कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:28 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए माया सुखठंकर से कोंकणी भाषा में हिमगिरी रे गीत का पाठ। इस गीत को रचा है रमेश वालुस्कर ने और संगीत से सवारा है सोमनाथ चहरी ने।
4: बच्चों, आज हम आपको कोंकणी में एक गीत सिखाएंगे। आज हमारे साथ माया जी आई हैं, वे आपको ये गीत सिखाएंगे। आपको पता है ये गीत किसने लिखा है? ये गीत लिखा है श्री रमेश वेलुस्कर जी ने और संगीत दिया है श्री सोमनाथ चारी ने। ये रचना राग किरवानी पर आधारित है। अच्छा बच्चों, पहले कागज पेंसिल निकालो और गाना लिख लो। शुरू करें।

0: ஹிமகிரீரே ஹிமகிரீரே துபர் ஹிமகிரீரே ஹிமகிரீரே உத்துங்கத்தும் முக்தத்தும் உத்துங்கத்தும் முக்தத்தும் ஹிந்தமாயே ஹிந்தபுயே முகுட்டத்தும் ஹிந்தமாயே ஹிந்தபுயே முகுட்டத்தும் ஃபிர் சே ஹிமகிரிரே ஹிமகிரிரே. அபே பெஹலா அந்த்ரா முக்த துஜே ஹட்டே அனி முக்த துஜே மாதே முக்த துஜே ஹட்டே அனி முக்த துஜே மாதே நிழ்யா மழபா கடே ஆசா துஜே நாதே நிழ்யா மழபா கடே ஆசா துஜே நாதே. ஔர் ஃபிர் சே ஹிமகிரிரே ஹிமகிரிரே. அப் ये दूसरा अंतरा मुक्त तुका चोवन हावी जाता मुक्त मुक्त तुका चोवन हावी जाता मुक्त आनीक वठार जुळटा मुक्त ताये सुक्त आनीक वठार जुळटा முக்ததாயே சுக்த. அவர் ஃபிர் சே ஹிமகிரிரே ஹிமகிரிரே. அப் ஏ தீசரா அவர் ஆக்ரி அந்த்ரா தீரே துஜே ஹட்டே ஆனி தீரே துஜே ஹட்டே ஆனி தீரே துஜி ஷான் தீரே துஜி ஷான். देखो धीरे तुझे हड्डे आनी धीरे तुझी शान काळजानी ह्या फुलचो काळजानी या फुलचो हिंद अभिमान हिंद अभिमान. और फिर से हिमगिरी रे हिमगिरी रे. अच्छा बच्चों, आपने इस गीत को ठीक तरह से लिखा है ना? अब इस गीत को किस प्रकार गाना है ये आपको माया जी सिखाएंगी.
1: बच्चों, ये गीत दीपचंदी ताल में निबद्ध है. इसका ठेका इस प्रकार है. धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार. गाने की पहली पंक्ति लड़के और लड़कियां दो भिन्न प्रकारों में गाएंगे और दूसरी पंक्ति सब मिलकर दो भिन्न प्रकारों में एक साथ प्रस्तुत करेंगे. प्रथम लड़कियां

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माया सुखठंकर से कोंकणी भाषा में हिंदी रे गीत का पाठ। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की कई बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का सामूहिक उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना, सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को यात्रा का बेहतर अनुभव प्रदान करना है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन किया, साथ ही जान माल के नुकसान को शून्य और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से उन्हें पूर्व चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की। उन्होंने पूरे देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की समीक्षा की। राज्य गृह मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में वनडे नेतम तिमसर दुकुम के समापन समारोह और निशी समुदाय के विकास के दर्शन और पौराणिक कथाओं पर आधारित एक एनिमेशन फिल्म की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। समारोह के बारे में जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह कार्यक्रम निशी समुदाय की दार्शनिक परंपराओं, मौखिक कथाओं और स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। 20वीं क्यो रोगी और 11वीं पुमसे राज्य स्तरीय टाइकंडो चैंपियनशिप 2025-26 आज वांगदी इंडोर स्टेडियम रूपा में संपन्न हुई। अरुणाचल टाइकंडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 20 जिलों, 4 स्कूलों, भारतीय खेल प्राधिकरण साई नाहरलगुन और सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी ईटानगर से 632 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कलकत्ता के विधायक सेतिम चांबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश अब टाइकंडो पुमसे में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बना रहा है। विधायक ने कहा कि ऐसी चैंपियनशिप राज्य के युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण दिखाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। ईस्ट सियांग जिले के रायांग गांव में कल थिएटर प्रोडक्शन पर आधारित 20 दिवसीय आवासीय कार्यशाला संपन्न हुई। कारपुंग कार्दू कला और सांस्कृतिक एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का नेतृत्व जाने माने आदि लोक कलाकार जेलोंग पादुंग ने किया, जिन्होंने लोक संस्कृति के माध्यम से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने की एक योजना तैयार की। तमिलनाडु में तमिलगा वैटरी कजगम टीवीके के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। वरिष्ठ नेता डॉ. हेमंत बिस्व शर्मा को असम में बीजेपी विधायक दल के साथ साथ एनडीए का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुए विधायक दल की बैठक में रंजीत कुमार दास, विश्वजीत देवमारी, अजंता नियोग, राजदीप राय, अशोक सिंगल और पीयूष हजारिका समेत 8 बीजेपी विधायकों ने विधायक दल के नेता के तौर पर डॉ. शर्मा का नाम का प्रस्ताव रखा। बाद में उपस्थित अन्य विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इन प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने औपचारिक रूप से डॉ. हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। पूर्व मंत्री तागे ताकी ने लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त ओली परमे के साथ मिलकर कल जीरो वैली में द मडफेस्ट 2026 का आधिकारिक उद्घाटन किया। अधिकारियों के अनुसार यह उद्घाटन इन आयोजन के विजन को औपचारिक शुरुआत और उत्सव का प्रतीक है। इस दौरान ऑफ रोडिंग रेस 27 से 29 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: This All Indies News Bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम देशभक्ति गीत का। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए शाबाश मिठू फिल्म से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी की आवाजों में एक देशभक्ति गीत का, जिसे रचा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, शाबाश मिट्ठू फिल्म के इस नगमे के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए पहला नगमा सुनते हैं, नगोरा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्रिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के फरमाइश पर मन मौजी फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, शब्द राजेंद्र किशन ने तथा संगीत मदन मोहन ने।

श्रोताओं कार्यक्रम का दूसरा नगमा सुनते हैं। वादिंग घेरा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा के फरमाइश पर। यह गीत है साहेब बीबी और गुलाम फिल्म से आशा भोसले के आवाज में। गीत के बोल है शकील बदुयानी के और संगीत हेमांता कुमार मुखोपाध्याय के।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर के आवाज में, जिसकी फरमाइश किए हैं पजोनिया जलाऊं उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चांसोलिया ने। गीत के बोल है साहिर लुधियानवी के और संगीत रवि का।

श्रोताओं, इस वक्त हम आनंद ले रहे हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का, हमारे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस पुराने सदाबहार नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला नगमा लैला मजनू फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को रचा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा है मदन मोहन ने, और इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा से।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा सुनिए। जनकपुरी सहारनपुर से आए जॉन डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो के फरमाइश पर, जो कि है दो चोल फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध आर डी बर्मन ने।

श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज़ 8 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवरटन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है। विजय,
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो एक कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है, उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं और खास करके उर्विल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास, जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उर्विल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम था जब मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है। और उर्विल जो है वो मारते दम से हैं। मैं हाँ, क्योंकि गुजरात में और बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी है वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने है, मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ इस प्रतियोगिता में बचा नहीं है, टीम 9वें स्थान पर है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप 4 में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कंपटीशन है। रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, 4थे नंबर पर है आरसीबी। कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को
1: आरसीबी का? सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब के जो है वो डेफिनेटली प्ले ऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फर्क पड़ता है। और जहां तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है। और वही हाल लखनऊ का है, उन लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं। और खास करके शक्ति, आज जब हमने देखा कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नजर आती है, आपके डगआउट में नजर आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: Kumari on the line. Nine. Kumari into the nine. And that is a very impressive performance from India here in Shanghai.
3: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप

0: में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई। भारत की बेटियां पहली बार भी एक ही पदक था जो मेक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
2: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूंगा

0: बेटियां, पहली बार भी एक ही पदक था जो मैक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूंगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में यह अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और कितना प्रेशर होगा आप समझिए, उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में और उन्होंने लिए वहां से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति। और यहाँ पे मैं कहूंगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है। और एशियन गेम्स वाले ईयर में, इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी जहां पे एशियन गेम्स भी हैं, और कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हो इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
1: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिश्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए, दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज तो यह है कि यह स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नजर सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, पहला मेडल है इस जोड़ी का।
1: जी हाँ, और अगर आप देखिए ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पे कहें या एशियन स्तर पे कहें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लगातार आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे थे ISSF की प्रतियोगिताओं में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफर भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं, तो एकमात्र चुनौती है और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुंचें।
1: हाँ, उन पे उम्मीदें तो रहेंगी क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुंचे हैं, और चोटरानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मजेब खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रेकनिंग में नहीं आते हैं।
0: जी बिल्कुल, अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी, अभय को हरा करके हौसला मिला होगा और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरुपमा देवी, लवप्रीत सिंह, वेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू। इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती भी नजर आएगी।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती हैं, तो उससे वो उनके प्रिपरेशन पे बहुत फर्क पड़ता है, और जब आपके दिमाग में बैठ जाए कि

0: चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
1: जी बिल्कुल। और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए पहलू की, गुजरात मेजबानी कर रहा है 44 साल में पहली बार भारत के पास मेजबानी होगी, और गुजरात यहां से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस सहभागिता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
0: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है यहां पे। और मैं ये कहूंगा कि कभी भी आप देखें, भारत जब मेजबानी करता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आपको मिला तो वो भी सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है।
1: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए, तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए या आजमाने के लिए। तमाम इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट है आपके लिए काफी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं, साइकिलिंग करते हुए।
1: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं, और एक फिटनेस का संदेश, और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए,
0: बहुत ही लोकप्रिय भी है। और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहां पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है।
1: जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहां पे इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला जारी है, जहां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 की बढ़त बना ली है, और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में, अगर लीग खेलों की बात की जाए, आईपीएल ने एक पूरी नजीर पेश की हमारे सामने की किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। फुटबॉल में ये लीग काफी सार्थक साबित होती हुई नजर आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नजरें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगे जब वर्ल्ड कप विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही, आईपीएल है या आईसीएल आईएसएल है, ये सब टूर्नामेंट्स, ये लीग बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफी सहायक साबित होती हैं। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पे वापस नजर घुमा लेते हैं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं, और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बनाकर के अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर भी संभाले हुए हैं, और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र

0: में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया।

0: था, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago signed 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
3: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
2: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that centre will continue to work with greater speed to realise your dreams.
3: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
2: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
2: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
4: समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism,